बातें, ये जहाँ होते हैं एक्सीडेंट। ये जहाँ होते हैं एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। मालिक मालिक मालिक मालिक।

0: 50 पैसे हो जाएगा तो जवाब कौन देगा? मस्के की माफी चला, मस्के की माफी।
1: अच्छा, और गैंग लाइफ।